आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में प्रेम, सुंदरता और मधुर भावनाओं का संदेश देता है फूल और पुष्प। फूल अपने रंगों और खुशबू से वातावरण को खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं, वैसे ही प्रेम और अपनापन भी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्नेह, सरलता और सकारात्मकता बनाए रखने से हर दिन और हर मन सुंदर बन सकता है।

मेरा मन तेरा प्यासा, ये गीत हम आप सुनेंगे। ये गीत प्रेम और अपनत्व की गहरी भावना को व्यक्त करता है। ये गीत मन की उस चाहत को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय के स्नेह के साथ की कामना करता है। प्रेम जीवन को मधुर बनाता है, रिश्तों में विश्वास और अपनापन भरता है। ये प्रेम ही है जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा स्नेह जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है, और यकीनन दुनिया प्रेम पर ही टिकी हुई है। तो चलिए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये गीत।

0: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലെ.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. और अब मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे. नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित. रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया. पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे. श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे. सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं. उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है.
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे. इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं. साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है. नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है. इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं. एक रिपोर्ट.
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले

0: के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र

0: तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमृषि, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है,
1: जी,
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी,
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता यह है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालूमरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालूमरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के

0: पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि

0: माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे, इसको भी डालो।
2: हाँ,
1: ये देखो
2: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: बहुत प्यारा लग रहा है।
2: हाँ।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
2: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता।

0: यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: बड़े मकान दिखते हैं और सड़क पर क्या क्या दिखते हैं?
1: कारें हैं।
0: अच्छा, कारें हैं और क्या?
1: बसें, ऑटो रिक्शा, स्कूटर।
0: ठीक ठीक, और कुछ नहीं दिखते?
1: हाँ जी, अनेक लोग हैं।
0: लोग हैं? लोग क्या करते हैं?
1: लोग चलते हैं।
0: अच्छा, लोग चलते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। ये लोग कैसे चलते हैं?
1: कार में चलते हैं।
0: केवल कार में?
1: नहीं जी, कुछ लोग बस में और कुछ स्कूटर पर।
0: अच्छा, और कुछ नहीं दिखता?
1: दिखता है जी।
0: क्या दिखता है?
1: कुछ आदमी पैदल चलते हैं।
0: हाँ, कुछ लोग कारों में चलते हैं, कुछ लोग स्कूटर पर और साइकिल पर, और कुछ लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलने वाले आदमी का कपड़ा और मुख भाव पर ध्यान दो, कैसा लगता है?
1: गरीब लगता है।
0: ठीक है, बहुत गरीब लगता है। कैसे?
1: वह सादा कपड़ा पहना है।
0: ठीक है, वो सादा कपड़ा पहना है और क्या दिखता है श्रुति?
1: उसके पैरों में सादा चप्पल है।
0: ठीक है, उसका मुख भाव कैसा है?
1: दीन भाव है।
0: उत्तम, उसके मुख में दीन भाव है, दैन्य भाव है। उसके दाएं हाथ में देखो एक फावड़ा है, फावड़ा माने मनबट्टी, और बाएं हाथ में दोपहर का खाना भी है, खाने का बर्तन है, सिर पर पगड़ी भी पहना है। उसका रूप और भाव देखकर वह एक श्रमिक या खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर जैसा लगता है। लगता है ना?
1: हाँ जी, ऐसा लगता है।
0: अब कार में बैठने वाले आदमी का रूप और भाव पर ध्यान दे। पहले हमने पैदल चलने वाले व्यक्ति का रूप और भाव देखा, अब तुम कार में बैठने वाले आदमी का रूप और भाव पर ध्यान दे।
1: जी।
0: वो एक आलीशान कार है ना, आडंबर कार है। उस कार के पीछे वाली सीट पर एक आदमी बैठता है, वह किसकी ओर देखता है? सुनी,
1: वह मजदूर की तरफ देखता है।
0: ठीक है, उसके मुख भाव पर ध्यान दो, क्या दीन भाव है?
1: नहीं, एक हासी भाव है।
0: देखो, कार में चलने वाला वह आदमी पैदल चलने वाले आदमी की ओर हीन भाव से देखता है, जैसे वह मुझसे बहुत ही नीचे है, ऐसा उसे दिखता है। देखो बच्चों, अब तक हम क्या कर रहे थे?
1: चित्र पर चर्चा कर रहे थे।
0: पाठ भाग के प्रथम पृष्ठ पर एक चित्र था, चित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, चित्र का विवरण कर रहे थे, अर्थात चित्र वाचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
1: चित्र वाचन कर रहे थे।
0: अच्छा, देखो अब गृह कार्य के रूप में एक गतिविधि देना चाहूंगा, माने एक्टिविटी देना चाहूंगा कि चित्र वाचन करके एक टिप्पणी तैयार कर अगले क्लास में प्रस्तुत करना। क्या तैयार कर सकते हैं?
1: हाँ जी।
2: हाँ जी।
0: ठीक है, अब हम इस कविता के कवि के बारे में देखें। कवि का नाम क्या है?
1: स्वप्निल श्रीवास्तव।
0: अच्छा, तो तुम पृष्ठ संख्या 81 ले लो।
1: ले लिया जी।
0: ठीक है, मैं एक बार पढ़ सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना।
1: हाँ जी।
0: स्वप्निल श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से वे पुरस्कृत हैं। देखो, ध्यान से सुना।
1: हाँ जी। हाँ,
0: सुना। तो श्रुति, स्वप्निल श्रीवास्तव के बारे में या कवि के बारे में जो परिच्छेद यहाँ दिया गया है, एक बार पढ़ सुनाओ।
1: हाँ जी। स्वप्निल श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान में आदि सेवे पुरस्कृत है।
0: अच्छा ठीक हुआ है। और प्रयाग तुम भी कवि के बारे में दिया गया वो परिच्छेद एक बार पढ़ सुनाओ।
2: स्वप्निल श्रीवास्तव जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों के उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी वृद्धि चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से वे पुरस्कृत है।
0: प्रयाग तुम्हारा वाचन बहुत उत्तम रहा।
2: धन्यवाद।
0: तुम दोनों ने वाचन में बड़े निपुण है।
1: धन्यवाद जी।
0: अब मैं इस परिच्छेद से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। ध्यान से प्रश्न सुनना और ठीक उत्तर देना।
1: ठीक है जी।
0: पहला प्रश्न है, स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग इसका उत्तर बताओ।
2: स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ।
0: ठीक है। अगला प्रश्न श्रुति से है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं?
1: ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
0: ठीक है। और क्या एक प्रश्न तुम बना सकते हो इस परिच्छेद से श्रुति? और एक प्रश्न सुनाओ, उसके पुरस्कार के संबंध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए।
1: भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि सेवे पुरस्कृत है।
0: ये तो उत्तर है। एक प्रश्न बता सकते हो प्रयाग, वे किन किन पुरस्कारों से सम्मानित है? इसका उत्तर है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय मुश्किल सम्मान आदि से वे सम्मानित है, पुरस्कृत है। तो आगे और एक ग्रहकारी भी मैं देना चाहता हूँ। देखो इस अनुच्छेद से अधिकाधिक प्रश्न और उत्तर तैयार करके लाना, ठीक है ना?
2: हाँ जी। हाँ जी।
0: तो और एक बार भी ध्यान से इसका वाचन करना है। मैं वाचन करके सुनाऊं। स्वप्निल श्रीवास्तव जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, लाख पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से वे पुरस्कृत हैं। ठीक है। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ अधिकाधिक प्रश्न और उत्तर तैयार करके कल के क्लास में प्रस्तुत करना। आज का क्लास यहां समाप्त होता है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
3: ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹിന്ദി പാഠം. പഠിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ഡി രാജേന്ദ്രബാബു. പഠിച്ചവർ ശ്രുതി, പ്രയാഗ്.
4: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര മൻ കി ബാത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മെയ് 29 വരെ 1800-11-7800 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. 1922 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമോ ആപ്പിലോ മൈ GOVയിലോ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 111 ആകാശവാണി ദില്ലി എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാസത്തെ മൻ കി ബാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മെയ് 29 മുൻപായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക. കേൾക്കുക മൻ കി ബാത്ത് മെയ് 31 തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആകാശവാണിയുടെയും ദൂരദർശന്റെയും എല്ലാ ചാനലുകളിലും പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വേവ്സിലും. മൻ കി ബാത്ത്.
5: മൊഴിയുറവുകൾ. മറവിയിലാണ്ടുപോയ ശബ്ദശകലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ, ഗാനങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ. ആകാശവാണിയുടെ ശബ്ദശേഖരത്തിലെ മൊഴിമുത്തുകൾ കേൾക്കാം, മൊഴിയുറവകൾ, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മൊഴിയുറവകൾ.

0: ആകാശവാണി സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 53 സെക്കൻഡും. ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് 9 മണിക്ക് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ ലവ്ലീൻ നിഗം. भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत. द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय. आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर. सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी. भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया. भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी. और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी. अब समाचार विस्तार से. भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है.
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं. भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को

0: छोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है।

0: ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की

0: मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: वे साईं तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है, जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो। रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे, पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं।

बड़े दिल वाला फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं न जा आज, कहीं न जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहां आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज कोई मीठा सा गीत लग रही है।

गाना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोर्मुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening and multilateral efforts to combat terrorism and in the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit to the Cyprus President, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorist financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus bilateral defense cooperation program signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defense sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defense cooperation between the ministries of defense of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustam G. Memorial Lecture in New Delhi yesterday. He said that the work is progressing towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars and modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative, reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and converting this vision into reality. Central Bureau of Investigation has arrested another woman from Pune in connection with the NEET examination paper leak case. The accused has been identified as Manisha Havaldar, who had been appointed as an expert with the National Testing Agency, NTA. So far, 11 accused have been arrested from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar in connection with the case. The CBI has conducted raids at several locations across the country and seized documents related to the crime along with laptops, bank account details and mobile phones. Securities and Exchange Board of India, SEBI, has banned multiple unregistered finfluencers and entities from the stock market for allegedly running a social media-driven pump-and-dump racket. In an interim order issued yesterday, the market regulator said the operators brought small and mid-cap stocks artificially inflated prices by sharing unsubstantiated bullish tips on social media platforms and later dumped their shares at huge profits, leaving retail investors with heavy losses. The SEBI said the accused used platforms such as Telegram and WhatsApp to manipulate trading volumes and stock prices through misleading market recommendations. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bangalore by 55 runs in Hyderabad. Batting first after winning the toss, Sunrisers Hyderabad posted a massive 255 for 4 in 20 overs. Ishan Kishan top scored with 79 runs. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

टावर हाउस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया रवि ने। दिले नादान गम से यूं न घबराना, जिंदगी की राहों में खुशी और उदासी दोनों साथ चलती हैं। कभी कोई याद दिल को बेचैन करती है तो कभी वही याद जीने का सहारा बन जाती है। दिल अगर सच्चा हो तो दर्द भी उसे और गहरा और खूबसूरत बना देता है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। केएल परदेसी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। रात जब खामोश होती है तो दिल की दबी हुई बातें और भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ दिया जाए तो नींद नहीं सिर्फ बेचैनी लौटती है। कभी कभी तन्हाई ही इंसान की सबसे अच्छी हमसफर बन जाती है।

भोसले की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस मोहिंदर ने। शाम की तन्हाइयां में तन्हाइयां हैं, ऐसे में तू आजा सनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम खामोशी ओढ़ लेती है तब किसी अपने की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे, कुछ न कहे, बस साथ होने का एहसास दे।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सी एच आत्मा की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है। इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है।

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for a strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

भक्ति फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज में। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे, और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

अवतार फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकेंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को

0: संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसके खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतजार नहीं करता बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं उनमें से ही ये भी नगमा है तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफ़र का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नजरों से शुरू होते हैं। जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हूं। अगर मोहब्बत का कोई सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतने विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाए। मगर वो ये दौर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किए। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बार कुछ नया बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब है। और गोल्डन एरा के वो सुनहरे वो खूबसूरत नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसमें मुख्य किरदार निभाया था विश्वजीत

फिल्म का यह नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था हम सबके बहुत ही प्यारे रवि साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस महफिल में ऐसा कोई आपकी जिंदगी में मिल जाए जो आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि बस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहें। शायद ऐसे ही नगमे हैं इस हमराही की महफिल में और आपको जरूर उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा। ये ऐसा नगमा है कि कई बार आप उस दौर में चले जाते हैं जब आपकी जिंदगी में भी कोई था। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना दस्तक दिए, बिना शोर मचाए। तुमसे मिलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधूरी दुआ को उसका जवाब मिल गया हो। तुम्हारी हंसी में सुकून है, तुम्हारी बातों में अपनापन, और तुम्हारे साथ जैसे हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी का होना इतना खास लग सकता है, लेकिन अब दिल हर धड़कन में बस एक ही बात कहता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर किसी को चुनना हो तो हर बार सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaardaily@gmail.com fmgoldaardaily@gmail.com। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ और ये नगमा है 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने और आवाजें हैं दत्ता जी और महेंद्र कपूर साहब की।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफ़ी करीब हुआ करती थी, और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, पुरानी फिल्मों को देखते हैं, गोल्डन एरा के उन फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दौर अभी बहुत पीछे नहीं रहा, बल्कि हमारे इर्द गिर्द आज भी अगर आप गाँव में जाएं, देहाती क्षेत्रों में जाएं, तो आज भी लगता है कि ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। वो बैलों की टोलियां और वो बैलगाड़ी, वो तांगे शायद आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे जब आप गाँव शहरों से दूर गाँव की तरफ रुख करेंगे। हालांकि सब कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे, मगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जो फिल्मों में देखा है अब भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीज़ें बदलती जाती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: آشا جی اور شمشاد بیگم کی گائے اسی آواز کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा. देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे. भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है.
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे. श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है. रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे. सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था. अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए. मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही. ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा. ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे. इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ. तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं. IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकेंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए, और प्यार हो तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम से जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सौदा शिमला एक मेगाहर्ट्ज़ पर बेहद खूबसूरत महफिल अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। ये फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलात आए बड़े कितनी परेशानियां आए लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ जिंदगी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी जिंदगी को बड़े ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी, आईएस शौहर, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, मदनपुरी, असित सेन, एके हंगल साहब, शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 10 सेकेंड। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों की और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है और अनजाने रास्ते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और जल्दी से आप जहाँ भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम, आप अपने ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaardaily@gmail.com fmgoldaardaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

जी हाँ, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियां बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन, हर वक्त बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। यह फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल अभी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। और अरुणिमा में बातें जिंदगी की, और जिंदगी में तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाई जाए उसकी, ऐसी ही बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है। लेकिन कहते हैं जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती, जिंदगी वो होती है जहाँ किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलने लगे, जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हर मुश्किल हल्की लगने लगे और हर खुशी दोगुनी। तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी ने आपको सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ हर दिन को बेहतर बनाने का एहसास है, जहां उम्मीद हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए प्यार हो और साथ निभाने का वो जज्बा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब लगता है सच्चा जीना वही है जहां दिल में प्यार हो और साथ में कोई अपना जो हर दिन को जीने की नई वजह दे जाए। बिल्कुल इस अगले नगमे की तरह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1971 में आई फिल्म अधिकार की। ये बेहद खूबसूरत फिल्म जिसके गीतों को लिखा है रमेश पंत ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उसे फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।

0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today.
2: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Deependra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after the talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all and terrorist organizations, including those listed under the 1,270.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 6 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और खुलूस आदाब। और दोस्तों आज हम एक नई सुबह में कदम बढ़ा चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने ही वाले हैं क्योंकि आज हम एक नए दिन में कदम, जैसे मैंने पहले बताया, रख चुके हैं। तो हर काम की शुरुआत हम खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं। हम जो भी

नया काम करते हैं, नए दिन की शुरुआत हम करते हैं तो उसी ईश्वर के नाम से करते हैं, उसी भगवान के नाम से करते हैं, उसी खुदा के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि खुदा की रहमत अक्सर खामोशी में मिलती है, बस दिल में यकीन होना चाहिए। और जब इंसान थक जाता है तब उस ईश्वर को याद करता है और वही ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। ईश्वर देर करता है मगर बेहतर देने के लिए करता है। हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती, कुछ दुआओं का खुदा सही वक्त पर जवाब देता है, सही वक्त मुकर्रर कर रखा है। इसीलिए ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तभी हम कोई नया काम करते हैं। इसीलिए हम भी आज के इस नए दिन की शुरुआत उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करेंगे। फिल्म पवित्र पापी के इस बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। पवित्र पापी फिल्म का ये नगमा रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। और दोस्तों, जैसा कि इस नगमे में बताया गया है, बेहद खूबसूरत ये नगमा। और हम हर काम, हम भारतीयों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन तमाम मजाहिब होने के बावजूद, अलग अलग मजाहिब होने के बावजूद, हम सिर्फ और सिर्फ हर काम उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, उस खुदा के नाम से शुरू करते हैं। उसी तरीके से हम हर दिन की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। और हर सुबह हम उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, फिर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, वो एक नया मौका लेकर आती है, फिर से मुस्कुराने का, फिर से कोशिश करने का और खुद पर भरोसा करने का। कल कैसा था ये जरूरी नहीं, आज कैसा होगा ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि हमारा हर दिन अच्छा हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो और खुशियों से भरा हो। सूरज हर रोज ये सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी वापस लौटती जरूर है। इसीलिए आज की सुबह को शिकायतों से नहीं, शुक्रिया से शुरू करें। जो है उसकी कदर करें और जो चाहिए उसके लिए उम्मीद के साथ मेहनत करें। यकीन माने, हर नई सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। बस दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस नगमे की तरह बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म अय्याश से, आवाज है यशोदास की। बहुत ही खूबसूरत यह नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप भी जल्दी से जग जाइए, देखिए परिंदे भी जग चुके हैं और वो चहचहाने भी लगे हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:27:15। महफिल आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें जिंदगी की बातें और जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाए उसकी बातें। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास भी वही मुस्कुराहट बिखरी हुई होती है। कहते हैं कि माना सफर थोड़ा मुश्किल है जिंदगी का, लेकिन रास्तों में थकान भी बहुत होगी। कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां लगेगा कि अब आगे बढ़ना आसान नहीं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बाद भी हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है बेहद खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यार से। लेकिन हर मुश्किल रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की तैयारी भी होता है। ज़िंदगी कभी सिर्फ आसानियों से नहीं बनती, ये तो उन हौसलों से बनती है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। और याद ज़रूर रखें, धीरे चलना हारना नहीं होता, और थोड़ा रुक जाना मंजिल से दूर हो जाना नहीं होता। बस खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। माना सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और जब इरादे सच्चे हो तो रास्ते भी एक दिन मुस्कुराने लगते हैं और आपको राह दिखाने लगते हैं इस नगमे की तरह।